घर का हो भनौला परदेशी जन हो जिलु हो मेरो घर थरिए के हो भनौला परदेशी जन हो चौला गाई मेरो थर ओ देवी एउटी खडा भइन जब तह देखेर खुसी भए

देवी को महिमा नजानी यसरी हे दूत के बोल्दछस् तेरा सुम्बने सुम्ब भाइ दुई को तारीफ के गर्दछस्।

दानाभेरहण्यात् गैरिक्षतमाथुर लग्नितस्मात् विव माये जालपने अर्कैतिर हजुरिके काम लग्ने यजेयु सारै मोह भया मता हजुरकी।

Olani barmana budiya lapu pachika palan kasari mani. Timati karuna garera jasane yengbena deki ani. Sarai bedaru banai dinu ola sajila mani. Gama keti ori chori ori parne sable mobile bagrahasan mobile bharchan. Jana bhuva jai mwagara bandhi chara bhanchan sappaili bhariya chante dira. Gosai kundalama bhage ki tirshuli bitma misine khola. Tapai aniko marine chola maena marnu hola. Shuddho jalpani bhagda cha marma tijima man bhagcha soiri tale. Teri beta hola bandhi hau timi pani dekhai naya chitale. Ye bhai ho mardachu marna lai, chardai nakala kei gari malai. Batne upaye barsak samai garula, marne nisay chandai cha marunla. Nammari hudai nare ke ek palta chin. Papko dar rati bar nara ki taile, buari hari lis. Shoi papai le parkaju na gaya. कई पापा ले पामारी इन दे बात की तब मैं लिखी हुई निंद्रा का बसमा सबई पारी गाये सीता बागुता इरोने निंद्रा बाट भीम पी कना ता समझे रा बिहाल होनी राम सीता बन मगर बसी चंदे निंद्रा में पारी चंदे छाक पर्यथिन झलास चबिंद के बिन चंदे दर्शन बिहाल वर बसी चंदे राम ने छोड़े ये चंदे अब कहाँ जाने वृंदावन को जंगल में एक्लै पड़ियो माई मई कैटेगरी तेस भन्ने छ पानी को पनेरो फुलबारी आमेरो गजुर बसाउनै रह्यो उठान उठ शिला के दाजु हो पूर्वै उजेल भयो ऐ रात भर शिलो भन्दाखेरि देवी भागवत कथा मिर्ता सारी विस्तार गर्छु अब

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
2: Siraj Production Banging Hard.

नमस्कार रेडियो शैलो सामुदायिक एफएम बयानबे थोप्लो सात मेगा हर्ज बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल भाद्र शुक्ल पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 16 तारीख भाद्र 31 गते बुधवार पंचमी तिथि 7:49 पलम मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षण कल्पे भरी